सुनिया पक्की 420 सुनिया पक्की 420 मार मार के अरे मार मार के चप्पल मेरी कर दी चप्पल मचंती दुनिया 420।

के है रेत निराले सुन सब लेते करे कवाली अकल का अंधा गाट का थोड़ा दिल में मुहब्बत दफाते दफाले जहाँ भी देखे कोई हसीना वही बजा दे बंटे

के मोटा बकरा मोटर साड़ी सुर में गानी, जहां भी तकड़ा इंजन देखा करती शंटम शंटी, दुनिया 420 दुनिया पक्की 420।

हे आत्मतुल्य श्रोतागण, इस संसार की उत्पत्ति के कारण स्वरूप नटराज शिव शंकर भगवान की अपार करुणा हम दीन जनों पर बरसे और बरसती रहे, इस शुभकामना के साथ आज हम सब शिव स्तुति का प्रारंभ।

0: रात और दिन के देवे है तोर साथ, के तोर साथ सूते है, के तोर साथ जागे है, केकर साथ तू ओतो में घूमे है, और केकर साथ तोर घर के सब काम होवे है। उजाला रेडियो के साथ तो हाँ, हमेशा सुख में और दुख में उजाला रेडियो तू जाने है तो।
1: Jouw business laten groeien of klaar voor de volgende stap. Ujala Radio helpt je.

अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राहत फतेह अली खान और ये है उजाला रेडियो। उजाला रेडियो को सुनते रहिए और मधुर मधुर संगीत जो है वो सुनते रहिए उजाला रेडियो पे, और मेरे भी गाने सुनिए, औरों के भी सुरीले गाने सुनिए।

उजाला रेडियो डे अवे प्लस पर देश भर में सुनाई देता है। तू बता दे सबको इसे बताते ओ तो में तू सुन सके तू घर में सुन सके है उजाला रेडियो और उजाला रेडियो साथ में ले जाइए तू चाहे जहां पर जाइए तू जान है तो उजाला रेडियो।

चला ब्रासा मेला फेस्ट इंडोर समर एडिशन डेन हाग में फूड म्यूजिक डांस शॉप मार्केट कल्चर फैमिली एंटरटेनमेंट टेस्ट बॉलीवुड फाइव्स एंड बीट्स ब्रासा फेस्ट जाता दाग 29 एंड जोन दाग 30 अगस्त इन जिया इवेंट सेंटर हे यू

आओ सब लाइन में खड़े हो जाओ। मुन्ने तुम इंजन, डब्बू तुम कोयले का डिब्बा, चुन्नू मुन्नू लीला शीला मोहन सोहन जादो माधो सब पैसेंजर, सब पैसेंजर रेडी, एक दो

रेलगाड़ी रेलगाड़ी रेलगाड़ी रेलगाड़ी छुक छुक छुक छुक छुक छुक छुक बीच वाले स्टेशन बोल

आज मंगल की हाथ गांव में मेला भीड़ झमेला टूटी दीवार टट्टू सवार रेलगाड़ी रेलगाड़ी बीच वाले स्टेशन बोले रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक धर्मपुर धर्मपुर धर्मपुर धर्मपुर मैंगलोर बैंगलोर बैंगलोर मैंगलोर मांडवा खांडवा खांडवा मांडवा रायपुर जयपुर जयपुर रायपुर तालेगांव मालेगांव मालेगांव तालेगांव नेल्लूर वेल्लूर वेल्लूर नेल्लूर सोलापुर कोलापुर कोलापुर सोलापुर कुक्कल डिंडिगल डिंडिगल कुक्कल मछलीपट्टम दिमलीपट्टम दिमलीपट्टम मछलीपट्टम ओंगोल नर्तिगोल नर्तिगोल ओंगोल कोरेगांव कोरेगांव कोरेगांव कोरेगांव अहमदाबाद अहमदाबाद अहमदाबाद अहमदाबाद शोतनूर कोतनूर शोतनूर कोतनूर चुक चुक चुक चुक चुक चुक बीच वाले स्टेशन बोले रुक रुक रुक

Live vanuit de Hoofdstad. उजाला रेडियो देश भर में, तू जाने तो उजाला रेडियो, उजाला ही उजाला देश भर में। हाँ, हर गांव में, हर एक कोना में, ऑटो में, घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो DAB प्लस के जरिए। उजाला इस फन हेल नीदरलैंड, तू जाने तो ढिंढोरा बजा दीजिए। Ujala presents the greatest voices of Bollywood, rag and rhythm ke saath National Indian Orchestra. 30 iconische stemmen in één onvergetelijke show. 19 september, Theater de Meervaart mee. Mouse Mewbroy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyka Dattadien en Nizam Waghi Dozijn ke saath. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl.

और यूं ही रोने नहीं दूंगा। अगर तुझे हो गया कुछ तो सारी दुनिया जला देंगे। फिल्म एनिमल का गीत को आप सुने। उजाला रेडियो पर सुनने वालों, एक और गीत

तू हाँ तू मानू मेरी जान, मैं तुझे जाने ना दूंगा, गायक किंग की आवाज में। एक और गीत पेश है अब, फिल्म बद्रीनाथ की दुल्हनिया से निकाला हुआ।

झूमता मौसम और मस्त महीना। फिल्म उजाला का गीत आप सुने उजाला रेडियो पर, और गाने वाले मन्ना दे एंड लता जी।

मैं जाऊंगी मेरे पीछे ना आना, चुरा लेना तुमको ये मौसम सुहाना। सुमन कल्याणपुर एंड मुकेश जी से आप सुने और फिल्म का नाम दिल ही तो है। उजाला रेडियो का प्रोग्राम सुनने वालों, लता जी के साथ अब आप सुनेंगे द मैन विद द गोल्डन वॉइस तलत महमूद साहब को।

अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां हैं, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश 15 फ्राग फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो ईमेल नर info@ujala.nl 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

आपके घर पर आने वाले दिनों में किसी का मुंडन संस्कार है, मुंडन संस्कार होने वाला है। उजाला रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं, 15 फरमाइश फॉर्मर होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो। स्टूडियो मेल ना info@ujala.net info@ujala.net

उजाला रेडियो का प्रोग्राम आप लोग सुन रहे हैं, हमारे प्यारे सुनने वालों आप हरी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, राम राम, नमस्ते और आदाब। आज इतवार 19 तारीख के जुली का प्रोग्राम जो आप लोग सुनने को जा रहे हैं, हमेशा की तरह जिनके घर पर कोई भी खुशियां, जन्मदिन, सालगिरह, विवाह, शादी वाह हो, आप को हार्दिक से बधाई और तहे दिल से मुबारकबादी अर्ज किए जाते हैं। जो कोई बीमार या तोला चाह रहे थे उनके तंदुरुस्ती के लिए भगवान से प्रार्थना, अल्लाह से दुआ है आप की ताकत और तंदुरुस्ती के लिए। इतवार का शाम का पैगाम जो आप लोग सुन रहे हैं, यहां से आप लोग सुनेंगे वेस्ट इंडीज का प्रोग्राम बैठे गाना हंगामा, 2 घंटे लगातार करीबन 7 मिनट व्यतीत हो चुकल है, 3:53। खुद में दखल माओ आफरी को शुभ शाम, मैं हूं सुबह से गोविंद और जहां तक मेरी आवाज पहुंचती है वहां तक मैं आप सभी को शाम का प्रोग्राम में स्वागत कर रहा हूं। आप हरी को शुभ दिन। और चलिए यहां से पहला बैठक गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे तो गाने वाले होंगे स्वर्गीय देसी रघु सिंह जी।

शाबाश शाबाश, भले प्रेम के कारण आज मैं जोगन ही बन जाऊंगा। आयुषरों से स्वर्गीय देसी रघु सिंह जी के आवास में गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुन रहे थे, यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम जो आप लोग सुन रहे, हमारे प्यारे सुनने वालों बैठक गाना का प्रोग्राम जो आप लोग सुन रहे, बैठक गाना हंगामा। और चलिए अब की बार प्रोग्राम में एक और ऐसा ही गीत जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे।

कैसा जादू मुसाफिर तोरे बोले, और इस तरह से खूबसूरत सा गीत जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुने। एंड चलिए अब की बार फिर से प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाला है स्वर्गीय दैश्य रघु सिंह जी, और इस गाना को मांग करने वाले और मेरे मैं खासर के भाई मनोज मुंगार के लिए।

शाबाश शाबाश, पल पल बीत जाती उमरिया, प्यारा प्यारा बचपन का। अवसरों से स्वर्गीय देसी रघु सिंह जी की आवाज में ये सुंदर सा गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुने, वेस्ट इंडीज का प्रोग्राम बैठ गाना हंगामा। एंड चलिए हार्लम में शीता भी प्रोग्राम को बढ़कर सुने।

आई बॉय पोंगे पोंगे डमाडो तमाती के चोखा तमाती के चोखा टमाटर के चोखा राशि का दिन दयाल के गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुने एंड यू आर अरे यार गनवा कैसे रहा पोंगी पोंगी डमाडो आई बो यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम जो आप लोग सुन रहे हमारे प्यारे सुनने वालों अब की बार गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे तो एक और ऐसा ही गीत जो प्रोग्राम में हम लाने वाले हैं आप सभी के लिए और चलिए गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे और अब की बार गाने वाले होंगे प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाले हैं द किंग ऑफ बैड गाना देवेंद्र सिंह सेवना जी एंड गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे एक और ऐसा ही गीत खूबसूरत सा गीत जो प्रोग्राम में

वल दाल भात बांटा के चोखा एना सेकर दाल भात बांटा के चोखा बनी एंड इस तरह से किंग ऑफ बैट गाना देवेंद्र सिंह शिवनाथ जी के आवाज में आप लोग सुने। बोले कि बोले रतिया के तो के देख के बोले मोहे नींद ना आवे, बोले यार कैसे हो सके है। एंड चलिए इस बार गाना को मांग करने वाले हैं सुतमेर में शांता करिश्म छेदी के आवाज में।

शाबाश शाबाश चादर बिछाओ बलमा एंड इंदर लगे बोले सोए रह लेना कृषमम छेदी के आवास में गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुन रहे थे। एंड अब की बार गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे तो आनंद मंगरू प्रोग्राम को बैठकर सुने हैं एंड परमन शहर में लक्ष्मी भी प्रोग्राम को सुने तो गाना पेश है आप दोनों के लिए एंड गाने वाले होंगे

आलू के चोखा, बैगन के चोखा, टमाटी के चोखा, वेल टमाटर के चोखा, जो भी चोखा बनाओ सब लेकर यार। एंड यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम जो आप लोग सुन रहे हैं। और अब की बार देखा जाए, अब की बार गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे तो एक और ऐसा गीत प्रोग्राम

0: और चलिए प्रोग्राम में गाना पेश है।
1: मीनो के माई
0: और रेखा जय राम शरण सहित उसमें बैनी राम शरण।

शाबाश पात्र मोरीकर यहीं दुई बोले बालम। इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुन रहे थे सुरेश हीरा की आवाज में, युवाड़ उजाला रेडियो का प्रोग्राम आप लोग सुन रहे हैं। और हर एतवार की तरह घर के काम हो गए, घर के सफाई हो गए हैं।

उजाला रेडियो का प्रोग्राम आप लोग सुन रहे हैं और प्रोग्राम जो आप लोग सुन रहे हैं वेस्ट इंडीज का प्रोग्राम बैठक गाना हंगामा। और इस आखिरी भाग में बैठक गाना आखिरी भाग में जो गाना आप लोग सुनेंगे एक और बहुत ही प्यार प्यार प्यार खाली प्यार के गाना हुई। और चलिए अब की बार गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे तो आओ मेरे में माला मुंगार प्रोग्राम।

क्रिकेट दिन के दाने दाने और इस से रोबिन के आवाज में गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुन रहे थे यार, यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम और घर के काम जोर तोर से होवे, सब कोई मिलाकर कमवा करे है।

और चलिए हमारे प्यार सुनने वालों प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाते हैं कुछ और बैठक गाना से। एंड अब की बार गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे तो देखा जाए एकदम बेल्जियम में बैठ करके सुने सुनीता, और सुनीता के लिए गाना पेश है और गाने वाले होंगे द किंग ऑफ बैड गाना देवेंद्र सिंह शिवनाथ जी।

आई बोय शाबाश शाबाश, रात भर हमें सूते ना देवे। और देखा जाए अमसराम आकर में अर्जुन बिहारी प्रोग्राम को बड़े कृष्ण है,

शाबाश शाबाश यार, अखिया मिला के एंडिया तरसा के बोले चले नहीं जाना। और इस तरह से क्रिसम छेदी की आवाज में गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुने, अब की बार गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे तो यंग टाइगर बैठक गाना है खास करके, और गाने वाले होंगे विशाल हीरा। और ये गाना को मांग करने वाले लाइस फेन शहर में, जहां पर इस वक्त सानु जी भी प्रोग्राम को बैठ करके सुने, तो ये गाना तुम्हारे नाम और मोई से सुन ले।

वाले शाबाश शाबाश हमार रनिया बता दे सच्चे बतिया। अब इस तरह से द किंग ऑफ बैड गाना देवेंद्र सिंह ना यार विशाल ही राजी। और देखा जाए फियानो शहर में जहां पर राम सुख भी प्रोग्राम को बैठ

से। वेल यार करमुआ बाचे कोई हमसे, अविश्रा से गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुने, एंड आशा है कि आप सभी को भी पसंद आए वो होंगे। और हमारे प्यारे सुने वालों, अब की बार गाना जो प्रोग्राम

0: चना चना जोर गरम बाबू लाया मजेदार अवसरण से देवानंद गातो के आवाज में गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुने। ए आज के खेलवा कितना स्पंग है स्पंजन अर्ख तिनिया या बॉय। एंड सभी भाउजन के लिए गाना पेश है
1: भाउजी क्या पीसे रे
0: अरे यार मसाला।

यार भाउजी पीसे मसाला एंड यू आर उजाला रेडियो यार उजाला रेडियो डी हतवान अम्सटर्डम शहर से प्रोग्राम को मना रहे हैं चाहे आप लोग जो चिकरत हो या तो मसाला पीसत हो या चाहे जो चिकरत हो ये प्यार से दुलार से पीसिए एनी वाला पत्थर मोरी कर यहीं या

मतलब बल्लम के बाद छोड़ एंड चलिए बैठ गाना की ओर। फिर से हम आप सभी को ले चलते हैं और हमारे प्यारे सुनने वालों, यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम जो आप लोग सुन रहे हैं, वेस्ट इंडीज का प्रोग्राम बैठ गाना प्रोग्राम जो आप लोग सुन रहे हैं, अम्स्टरडम से प्रोग्राम को बना रहे हैं एंड अलक सोमदा फन द्री तत् फाइव आप लोग सुन सके हैं प्रोग्राम बैठ गाना हंगामा। चलिए प्रोग्राम में एक बार फिर से यंग टाइगर ऑफ बैठ गाना विशाल हीरा को हम ला रहे हैं एंड इस बार जो गाना आप लोग सुनेंगे, बोले भैया ताके लड़की, वेल तो लड़की ना तकिए।

आपस में देखे तो निकल जाए, एंड भौजी के गुस्सा बोले निकल चले जाए। इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुने, और खान शर के द यंग टाइगर ऑफ बैड गाना खान शर के विशाल हीरा की आवाज में। और हमारे प्यारे सुने वालों, देखा जाए तो घड़ी तरफ तो करीबन करीबन करीबन 5 बजने वाले हैं, और धीरे धीरे हम आप लोग से आहिस्ता आहिस्ता आप लोग से इजाजत चाहेंगे। आशा है कि आज का बैठक गाने का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों को पसंद आए होंगे।

और हमारा साथ देने के लिए बैठक गाना का प्रोग्राम सुनने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद एंड शुक्रिया। आने वाले फिर से आने वाले सप्ताह इतवार को फिर हम आप लोग से मिलेंगे। आप लोग अपना इतवार का शाम और इतवार का रात तो लोग मऊ से बिताइए। जो भी आप लोग करेंगे इस मौसम में प्यार से दुलार से कर लेना, नहीं तो ना करिए यार। हम आते बोले जो ची करना है आज कर लेना, कल तू ना देख लेना हम देख ली यार। अगर कोई से आपसे प्यार है तो बोल देना यार कि हमें तुम्हें प्यार है, वरना आपको पछताना पड़ेगा। इस इतवार का मौसम प्यारा प्यारा मौसम, तो लोग मोई से बिताइए, मोई से खाइए, मोई से पिए एंड मोई से रहिए। अपने आप की जरूर से ख्याल कीजिए। और हमारा साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड शुक्रिया। आने वाले दिनों में फिर हम आप लोग से मिलेंगे यहीं पर जहां पर हम छोड़ के

0: Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl.
1: अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां हैं, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश, 15 आवाजें फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो, स्टूडियो ईमेल नर info@ujala.nl, info@ujala.nl, 15 आवाजें फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो।

एक तेरा साथ और हमको दो जहां से प्यारा है, लता जी एंड मोहम्मद रफी साहब से गीत आप सुने, फिल्म वापस से निकाला हुआ। और सुनने वालों, उजाला रेडियो, आपको मालूम है ना कि खुशी हो या गम, उजाला रेडियो है आपका साथ हरदम।

मैं तेरा बन जाऊंगा एन मोय नंबर आउट कबीर सिंह एंड अब हिस्सा लेंगे प्रोग्राम में मोहम्मद रफी साहब।

बज़्म दो है और एक जान। मोहम्मद रफी साहब की आवाज, फिल्म का नाम तेरे घर के सामने। उजाला रेडियो है ये। De leukste, ja toch? En de gezelligste, ja toch?

रात और दिन के देवे है तोर साथ, के तोर साथ सूते है, के तोर साथ जागे है, केकर साथ तू ओतो में घूमे है, और केकर साथ तोर घर के सब काम होवे है। उजाला रेडियो के साथ तो हाँ, हमेशा सुख में और दुख में उजाला रेडियो तू।

मुंडन संस्कार होने वाले हैं पूजा रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं 15 फरमाइश फॉरमार होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल नार info@ujala.in

0: बहुत अच्छे, मगर तुम रुक क्यों जाती हो?
1: मुझे जाने दो अशोक बाबू।
0: लाजो

उजाला प्रेजेंट्स द ग्रेटेस्ट वॉइसेस ऑफ बॉलीवुड राग एंड रिदम के साथ नेशनल इंडियन ऑर्केस्ट्रा 30 इकोनिसे स्टेमें इन एन अनवर्गेटलिके शो 19 सितंबर थिएटर द मीरवाड में मौसमी ओब्रॉय शेखर कुमार अयान मुखर्जी बॉयका ततजीन एंड निजाम वागी दुसैन के साथ कॉपी टिकट्स ऑब्टेन्ड विया मीरवाड.nl

द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, लता मंगेशकर की आवाज, लक्ष्मीकांत और प्यारे लाल की साज पर जाओ जी जाओ, पर इतना सुन लो, थोड़ी चूड़िया पहन लो, एक घगरा सिलवा लो। सितारों का सितारा उजाला रेडियो का पैगाम है और मिक्स मार्क सॉन्ग्स आपकी खिदमत में नशर है।

द फर्स्ट लेडी म्यूजिक डायरेक्टर उषा खन्ना के साज पर मजरू सुल्तानपुरी का लिखा हुआ सिलेक्शन आशा भोसले और रफी साहब की आवाज़ों आपने भी सुने हैं उजाला रेडियो के जरिए। और भी सिलेक्शंस आपकी खिदमत में नशर है और फ़ोन का नंबर है 020-409-0807 रेडियो के क्षेत्र पर हर एक आमर काज के वास्ते या तो info@ustarchujala.net

0: समझे,
1: हम भी समझे। जीवन के ये रास्ते लंबे है सनम, कटेगे ये जिंदगी ठोकर खा के हम। अच्छा जी मैं हारी, चलो मान जाओ ना, देखी सबकी यारी, मेरा दिल जलाओ ना,
0: मेरा दिल जलाओ ना।
1: नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शहीद गुलजार। उजाला रेडियो का पैगाम आप सुन रहे हैं, सभी को एक बहुत ही शुभ दिन अर्ज है। आप हमें जहाँ से और जिस हालात में भी सुन रहे हैं, आप सभी खुश रहे और सलामत रहे।

बहुत ही खूबसूरत रोमानी सिलेक्शन आपने भी सुने हैं। इशारों इशारों में दिल लेने वाले, बताइए हुनर तूने सीखा कहाँ से? निगाहों निगाहों में जादू चलाना मेरी जा, सीखा है तुमने जहाँ से? युवाड़ का पैगाम है और फोन का नंबर है एडमिनिस्ट्रेशन पर 02049 09 08 07।

हमारा नंबर आप जरूर नोट कर लेना 02-4-09-0807 या तो ईमेल द्वारा भी आप हमें खबर भेज सकते हैं और पता है info@starjoujala.nl।

बहुत ही रोमानी सिलेक्शन आपने भी सुने. आंसू का हमारे गम ना करो, वो बहते हैं तो बहने दो, एहसान तेरा होगा मुझ पर, दिल चाहता है तो कहने दो, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है. सितारों का सितारा उजाला रेडियो, आपकी दिलों की धड़कन और आंखों का तारा.

मेरे जुड़े संगीत में इस बार आप सुनिए, आज मौसम है बड़ा बेईमान है बड़ा आज मौसम। मिक्स मार्क सॉन्ग्स में आपकी खिदमत में ये सिलेक्शन भी अर्ज है।

सनो एक पल चैन न आवे सजना तेरे बिना। या नुसरत फतेह अली खान साहब की आवाज़ में आप सुने। एन एक मुत तुखीफ ये मुत वेल फन द स्टाइल होल्डन फन नुसरत अंदर्स नहीं अंदर्स फिंच इट गवोन नीट मोई। मार अगला जो हम आपको अगली गज़ल जो आपको हम अब सुनाने को जा रहे हैं मेहदी हसन की आवाज़ में, तो ये गज़ल जो है अगर जो बीते गज़ल आपको नहीं पसंद आए हुए होंगे तो ये गज़ल जो है तो ज़रूर पसंद आएगी आपको, सुन लेना।

का सामा हो गए रफ्ता रफ्ता। मेहंदी हसन से आप सुने। उजाला रेडियो, गीत और गजल की दुनिया आपकी खातिर।

0: चले जाओगे तो सोचेंगे कि हमने क्या खोया और क्या पाया। जगजीत सिंह और चित्रा सिंह, हाँ, इन दोनों से आप गीत को सुने। और अब अगली गजल जो है अशोक खोसला की आवाज में पेश है। एक बार फिर शुरू करता हूँ। हाँ, पेश है
1: घट

तुम्हें प्यार करने के जी चाहता है, अशोक खोसला की आवाज में गीत को आप अभी सुने। उजाला रेडियो है ये सुनने वालों, और पेश है प्रोग्राम गीत और गजल की दुनिया।

गे मुझे तुम नज़र से गिरा रहे है। आप इस गीत को गज़ल को सुने मेहदी हसन की आवाज़ में, और हम आपको एक राय दिए थे, याद है? अगर इस प्रोग्राम से और ज़्यादा लुफ्त आप उठाना चाहें तो घर के चिराग जो है कम कर दीजिए, रेडियो की आवाज़ और जोर कीजिए, आंखें बंद करके फिर सुनिए।

अपने जवां दिल की धड़कनों को गिन के बता कि दिल में प्यार है कि नहीं। आप सुने जगजीत सिंह से, हाँ जगजीत सिंह से, झुकी झुकी सी नजर है। अच्छा लगता है। अगर ऐसा हो तो आप एक ईमेल भेज सकते हो info@ujala.nl हमारे पास। अगर ना अच्छा लगता हो तो भी, हाँ तो भी ईमेल आप भेज सकते हो।

अब एक तू ही धनवान है गोरी और बाकी सब कंगाल। पंकज उदास की आवाज में आप गजल को सुने उजाला रेडियो पर। गीत और गजल की दुनिया हमारे साथ आपकी खातिर।

वो कागज की कश्ती और वो बारिश का पानी। जगजीत सिंह, हाँ जगजीत सिंह की आवाज में आप सुने। और इस गीत और गजल के प्रोग्राम में अब हिस्सा लेंगे गुलाम अली साहब।

प्रोग्राम का इस हिस्सा में आखिरी गजल को आप सुन रहे हैं। बहुत जल्दी हम फिर आपसे मिलेंगे ऐसा ही प्रोग्राम को लेकर के। हमारा इंतजार कर लेना जरूर।

बीनू कोटरावा तोर विवाह होने वाला है, तोर शादी होने वाला है, सुनवा लो तो डीजे आप फरमाइश ऑफ उजाला रेडियो 15 फरमाइश 15 आवाज फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो। दिस खाई बीनू कोटरावा तोर विवाह होने वाला है, तोर शादी होने वाला है। नेम कॉन्टैक्ट ऑफ मैट उजाला रेडियो, ईमेल info@ujala.nl 15 आवाज फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो।

ये उजाला रेडियो है, सुनने वालों इसी के साथ आरंभ किया जा रहा है प्रोग्राम गीत और गजल की दुनिया। इस प्रोग्राम में गीतों और गजलें हम आपको सुनाते हैं, बातें कम करते हैं ताकि इत्मीनान से प्रोग्राम को आप सुन सके। इसी उम्मीद के साथ प्रोग्राम को बनाता हूं कि आप सुनेंगे और पसंद करेंगे भी। इस प्रोग्राम के बारे में कुछ भी कहना हो आपको, पसंद हो या ना पसंद हो, कुछ कहना हो आपको, तो आप ईमेल भेजिए। पता है info@ujala.nl। तो चलिए प्रोग्राम में पहली गजल जगजीत सिंह की आवाज में पेश है।

झुकी झुकी सी नज़र दिल में प्यार है कि नहीं, दिल में प्यार है कि नहीं। और गीत या तो गजल को आप सुने जगजीत सिंह की आवाज में। पेश है अब एक और गजल और फनकार पंकज उदास की आवाज में।

के लोग करते हैं नफरत शराब से, हमको मिली है जीने में राहत शराब से। और आप पंकज उदास की आवाज में इस सुंदर गजल को सुनें।

जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, मैं तो मर कर भी मेरी जान तुझे चाहूंगी। अनुराधा पौडवाल की आवाज में इस गजल को आप सुने और ये उजाला रेडियो है, प्रोग्राम का नाम गीत और गजल की दुनिया।

दामन उलझाना मेरी आदत है, कांटों से दामन उलझाना मेरी आदत है, दिल में थोड़ा दर्द बसाना मेरी आदत है। जगजीत सिंह की आवाज में गजल आप सुने, और अब हिस्सा लेंगे प्रोग्राम में चंदन दास।

चंदन दास की आवाज में आप सुने कि दिल रह गया हमारा एक बार मुस्कुराकर, गम दे गई मोहब्बत एक बार गुनगुनाकर।

रात ऐसे बिताई है तुम्हें याद किया है, रात ऐसे बिताई है तुम्हें याद किया है, जब नींद न आई है तुम्हें याद किया है। पंकज उधास की आवाज में आप सुने। उजाला रेडियो है ये, प्रोग्राम का नाम गीत और गजल की दुनिया।

चमकते चांद को टूटा हुआ तारा बना डाला, चमकते चांद को टूटा हुआ तारा बना डाला, मेरी आवारगी ने मुझको आवारा बना डाला। गुलाम अली की आवाज में इस सुंदर गजल को आप सुनिए।

ना जी भर के देखा न कुछ बात की, ना जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरजू थी मुलाकात की। चंदन दास की आवाज़ में आप सुने। और अब आज का प्रोग्राम में आखिरी गज़ल।

में हाथ डाल, ऐ गुल चेहरा परी जमाल, मुद्दत से दिल उदास दादा दास है, तेरे होठों की प्यास है, ऐ दिल पर मेरे लब पर कब छलकेगा तेरे लब का, जा जा जा

0: off on Ashala Radio.
1: Doctor ji, doctor ji, doctor ji, please ek baat sunti jaiye. Bas ek baat, doctor saab.
2: कहिए.
1: वो जो आपने मेरे लिए दुआ की थी ना, जरूर सच्चे दिल से की होगी. भगवान ने सुन ली है और मुझे हो गया है.
2: क्या हो गया है?
1: मुझे प्यार हो गया है.
2: अच्छा, मुबारक हो.
1: लेकिन आपने ये तो पूछा ही नहीं, किससे?
2: अरे हाँ, ये तो मैं पूछने भूल गई. किससे?
1: जी वो.
2: बोली बोली, कौन है वो खुशनसीब?
1: जी वो खुशनसीब आप ही हैं.
2: थैंक यू वेरी मच. माफ करना, मुझे कोई भूख नहीं.
1: सुनिए, ये भूख वाली मोहब्बत बिल्कुल नहीं है.
3: ओए चांद जी.